0: याज्ञा करामः। सर्वबलधारिणो अनाद्य अनंतो दिव्येनि मोक्षांपन मातावन कन्यमरियतुमान्गे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद। अप सतटु सिहिकरनो तुमियगे दयाबरे आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरनेन गलवीम सलसो मनव मेकी दे अपगे स्वामी वो जेसु क्रिसु सहांसे उदिसाम अपट लेबेवा आमेन।
1: जेसुनी ओब इस्सर विला गायने चार्ल्स थॉमस समग नुवंदिक सेनारत्न गी पदरचने पॉल प्रणांद पियतुमा संगीताध्यक्षने स्टैनली पेरिस।

0: याज्ञाकरं सर्वबलधारयो अनाति अनंतो दिव्येनि मोक्षांपन मातावन कन्यमरिय तुमांगे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहिकरन ओतुमियगे दयाबर आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुर वलिन हा अनवरत मरनेन गलवेम सलसो मनव मेकी दे अपगे स्वामियो जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लबेवा आमेन।
1: शांत कुरसे अदयानमें अप सतुरंगें अपगलवा देवा अपगे देवे स्वामिनी